0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

जाने, ताप छोड़ गया परवाने, गुरपूरा हैरानी, सन सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप मुबारक वाला, साथ सहज सुख किन महे उपजे, मन होवा सदा सुखाला रहाओ, हर हर नाम दियो दारो, तिन सगला रोग निदारो, अपनी कृपा तारी, तिन सगली बात सवारी, प्रभु अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण न बिचारिया, गुर का सबर भयो साथी, तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा, तू साहेब मुनि गहरा,

कटपुनी पई गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबनी थाई रव्या आद जुगाद जाता बड़ प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर टूटे पार।

गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं।

महाकटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे मे पातु मातांडो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः।

शिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पल प्रभुः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विगत

0: अच्छा मानो द्वापर वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ठाकुर चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और माला।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी है, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये जिंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही है सिविक हॉलीडे की। फायर वर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायर वर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और जिंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप एंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मजा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप जिंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मजा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है, जी हाँ। तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल पे है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की, किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक को कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को 519-500-46-1260 किचनर वाटरलू गॉल्फ में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को। जी हाँ, नसीब खेंड आपको
बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-546-1260 आप कॉल करो। अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एचके मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। एचके मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो। तो आप 416-524-8004 पर आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको क्लीजन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और क्लीजन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये है आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो, तो आप masterclusiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंटरमेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

देखा तो एक बार फिर से आपका स्वागत है धरती पर में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। प्रोग्राम घंटा और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है। बड़ा रोमांटिक सा है। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है तो सुनते हैं अच्छे अच्छे गाने।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको HK मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-7004 416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप HK मूवर 416-524-7004 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट से जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मजा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने स्वर्धा पला है, वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोइम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली 2 लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी की पोइम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोइम लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली 2 लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वूल्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs.
1: टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं अग नहीं लगेगी। शायद
2: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
3: This is AM 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम

बाबू, वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना आज।

0: राजा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता वाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

रहमत तेरी, नाम तेरा, कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे, एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज़ च।

0: Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: रियल एस्टेट दी दुनिया बिचाओ अपने सुपनिया नु सच कर बखाओ फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
2: रियल एस्टेट दिया बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
1: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
2: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
1: 905-671-2000
2: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपनिया नु सच कर बिखाओ
3: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हां ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉट सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी ता हुन हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.

और रेडियो आवाज के बीच आप सब दा हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अमदीप सिंह मैरीपाल एक बार फिर तो मुखातब हाँ। और हमेशा इतना कि एक सुरमई सवेर जिंदगी दे बराक वर्गी अलादीन दे चिराग वर्गी जिमें संघने बुड़ा की छां जिमें मोह विच डुबी मां ठंड वर्गी खंड वर्गी दोस्ती दे सच वर्गी खुशी ना भरे गच वर्गी मेरी सत श्री अकाल एक बार फिर तो प्रवान करूँगे। रेडियो आवाज के बीच सारे सड़ना शामिल हो चलते हो सफर के वाल जो बहुत खूबसूरत पर सफर उदों ही वधिया लगता है जदों कुछ बहुत वधिया होवे। बहुत वधिया थानू कुछ देण लगे हैं सुनते रहो।

0: Central, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: मेरी पहली पसंद.
2: I love it.
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती.
1: हम सबकी पसंद
4: रेडियो आवाज.
1: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 टू 10 एंड सैटरडे 10 टू 1 ऑन AM 530. नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स. प्रमोट योर बिजनेस विद अस. कॉन्टैक्ट 416-518-3200.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे. इतनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
6: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं.
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते. वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.

0: सुल्तान जी भी आ गए हैं और ब्रिजी सबसे पहले आपका मैसेज डिलीवर कर दें, आप बिजी होते हैं
1: जी
0: सारा दिल ही के किसी दे भी कोई दर्द है
1: जी।
0: ते ब्रिजी आज साउथ इंडियन फिल्मा दे हीरोज वांगो बात कर रहे हैं, काली अंकल कहीं हुई ने
2: धोते नो की कहीं
1: लुंगी डांस
0: लुंगी डांस
2: ब्लैक लुंगी
0: ब्लैक
2: टी-शर्ट
0: नाल कड़ा जड़ा ना दे पाया हम दा लग तरह दा
1: ब्लैक,
0: सो आज पूरा हीरो बन गया है। सो ब्रिजी को पहुंचना तुसी किसी ने भी अपनी बॉडी नो मेंटेन रखना, बॉडी दे विच ब्लड प्रेशर तोड़े सोजिश तोड़े पेन है क्या किसी दे ते या तुसी प्रॉपरली चल नहीं सकते, टेंशन है क्या कोई, पैसे दिया था ना जाए ब्रिजी को पैसे पैसे नहीं दे सकता सुकून दे सकता
2: बिल्कुल
0: संतोष को सुकून भी है सबर भी है पर उसकी बात यह लाइफ च नहीं है टैटू तो है संतोष सही है कि नहीं
2: बिल्कुल
0: सो सो संतोष जी मैं माफी चाहना तो
1: मुरिवन्ना महानारायण तैलम क्षीरबल और कर्पूरादि बहुत तेल है।
0: महानारायण किसके लिए यूज होता है?
1: पेन के लिए जी।
0: तो कर्पूरादि
1: कर्पूरादि भी पेन है फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है। कर्पूरादि इज मोस्टली फॉर द कोई कुछ कफ ऐसे कुछ है तो
0: कर्पूरादि
1: कर्पूरादि करें
0: कर्पूरादि। हाँ सो तो मरवन्ना दस तो मेरा वो
1: मरवन्ना हाँ जी सब पेन और नरिश करने के लिए स्किन नरिश करने के लिए बहुत अच्छा है
0: ठीक है। सो कौन कौन से आप तरीके से करते हैं?
1: जी हमारे साथ आयुर्वेदिक अभ्यंगम पोटली थेरेपी
0: ऑल काइंड्स होता सर पे तेल डाल
1: पूरा बॉडी मालिश करने ये है अभ्यंगम उसका संस्कृत वर्ड
0: नौ से लेके सर के बाल तक
1: पूरा पूरा बॉडी में।
0: तो शिरोधारा
1: शिरोधारा सिर में तेल डालेंगे जी थर्ड आई थेरेपी
0: थर्ड आई
1: कंटिन्यूस ड्रिपिंग द ऑयल ऑन द फोरहेड
0: खुशबू आयल स्ट्रोंग बहुत ने उसे जाके लगना की तमिलनाडु पहुंच गए या केरला पहुंच गए
2: जी बिलकुल।
0: सो म्यूजिक भी हो जाएगा अगरबत्ती भी हो जी है अंदर तेल की खुशबू भी हो जी होती है प्रॉपरली क्लीनअप के नाल टॉवल सर्विस देंगे ने फुल टॉवल सर्विस का मतलब एक टॉवल एक बार यूज होंगे
2: जी।
0: सो तुसी बड़ी रीजनेबल कीमत से $55 पे कर दो $55 पे करके जरा अपनी मालिश करवानी है
1: जी।
0: ब्रिजी नंबर बोल दो
1: 6476491369
0: 647 अपॉइंटमेंट कितनी है थोड़ी सी यहां
1: लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है जी वीकेंड आल्सो अवेलेबल या
0: वीकेंड पे है
1: या
0: लॉन्ग वीकेंड है
1: लॉन्ग वीकेंड
0: मंडे का भी है
1: मंडे का भी है जी
0: ठीक है। तुसी मेल और फीमेल दोनों जा सकते हो हस्बैंड एंड वाइफ
1: या
0: 647 619 1373 647 619 1369 647 619
1: 13 on a third.
0: Thank you so much. 647 619 1373 call karni hai.

9500 बाबा बक्तौर थोड़े लाइन खुले ने ते दो लाइन बिजी ने जल्दी तो पहला कॉल कर लो जल्दी तो पहला नाम डेट ऑफ बर्थ ते नाल फिर थोड़िया दो आदतां एक तुसी की चेंज कर सकते लाइफ च एक आदत ऐसी दसूंगा जिन्हें थोड़ा जिंदगी पिछे नूं खिंचिया पिया ते कसूर लोगों का किसी ने थोड़ा आ करता किसी ने थोड़ा ओ करता किसी ने ई करता ना तो मास्क नूं कदे कंप्लेंट हुंदी किसी ने मेरा माड़ा किया ना अंबानिया नूं कंप्लेंट हुंदी किसी ने साडा माड़ा किया ना किसी होर अमीर बंदे नूं गरीबां दीआं कंप्लेंट बहुत हुंदीआं उन्हें माड़ा करता इन्हें माड़ा करता तां मैं इत्थे रह गया नहीं तो मैं टुट पैण ने जलेबी मारी अख विच तेल पै गया।

0: 선토지도 스미드게는 나야크나히 나야크도 सुल्तानजी तुसी ऑन एयर प्लीज देओ मैसेज अपना सुल्तानजी
1: थैंक यू वेरी मच जी बहुत-बहुत शुक्रिया ते ब्रैम्पटन टीवी एंड प्राइसेस दा मैसेज दे रहे हैं क्योंकि लास्ट कॉल है लास्ट वीकेंड है ब्लैक फ्राइडे प्राइसेस इन जुलाई थानू मिल रही है जुलाई मंथ खत्म हो गया पर राइट वे वीकेंड आ गया करके साडे कस्टमर नू एडवांटेज है कि वो लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर इन जुलाई ते फर्स्ट वीकेंड ऑफ अगस्त च इहदा एडवांटेज लै सकदे आ जी जिहदे विच बिल्ट इन किचन लैणा ते ओ ना कस्टमर्स नू 10 या 20 नहीं 40% दा डिस्काउंट दिता जा रहा क्योंकि ब्लैक फ्राइडे प्राइस इन जुलाई च बिल्ट इन कुकटॉप बिल्ट इन वाल ओवन बिल्ट इन माइक्रोवेव बिल्ट इन डिशवाशर ते बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज पूरे दा पूरा बिल्ट इन किचन $12,000 वाला $6,900 च लैके सिर्फ $6,800 सेव ही नहीं करनगे बल्कि $6,900 छे महीने च पे करना है कोई इंटरेस्ट भी नहीं है फ्री होम डिलीवरी मिलेगी बोवेड एंड चिंकूजी ते है जी ब्रैम्पटन अपलायंसेस .com साड़ी वेबसाइट है फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर की गल करिए या स्टैक केबल वाशर एंड ड्रायर की गल करिए ते वाशर थले ड्रायर उपर स्टैक हो जाएगा $2,200 वाला $1,499 च लैके $700 तुसी सेव ही नहीं करने बल्कि $1,499 भी छे महीने च पे करना जी कोई इंटरेस्ट नहीं है ते जो तुसी स्टैक करना तुहाडा वाशर एंड ड्रायर 27 इंच वाइड ते 76 इंच हाइट च स्टैक्ड एंड इंस्टॉल हो जाना है तुसी पहुंचना है सिलेक्ट करन वास्ते 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते साडे टीवी सैक्शन नु मिस ना करना क्योंकि ब्लैक फ्राइडे प्राइसेस 299 च 50 इंच मिल रहा 399 च 55 इंच मिल रहा 599 च 65 इंच टीवी लोगे तुसी 699 दा 75 इंच टीवी मिल रहा ये सारे दे सारे 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K स्मार्ट टीवी है जी गूगल फीचर्स दे नाल है फैक्ट्री सील्ड ब्रांड न्यू डब्बे च बंद मिलनगे फ्री होम डिलीवरी है ते 6 महीने च तुसी पे कर सकदे हो कोई इंटरेस्ट नहीं है 905-450-2828 नंबर है ब्रैम्पटन टीवी ऐप ये टिकटॉक ते साडा अकाउंट है तुसी टिकटॉक ते जे फॉलो करना या जेड़ी इस वीकेंड दी स्पेशल प्रमोशन है वो चेक करनी है ते ब्रैम्पटन टीवी APP ब्रैम्पटन टीवी ऐप ते जाके तुसी टिकटॉक ते भी ये स्पेशल प्रमोशन नु चेक कर सकदे जी ते साडी वेबसाइट है ब्रैम्पटन अपलायंसेस .com 905-450-2828
0: 905-450-2828 जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सुल्तान जी जैसे बुला रहे ने उसे शबानू मेरे नाल है शबानू
2: हाँ जी
0: वो जब मैं बोल के था ना वो कच्चा कुच्चा सा बोला था मैं
2: हाँ जी
0: उसके बाद राइट वे मैंने इधर गाना प्ले करता मैं वो गाना चल पाया नायक नहीं खल नायक हूँ मैं सोचने लग गया यार ये क्या चल पड़ा लोगों तक सच्ची और साफ सुथरी बात लेके जाता हूँ बिजनेस जी ने करना ना बिजनेस ना मतलब ये नहीं कि उंगलियों खोल लिया शिवानु समझाइए यार बिजनेस बारे मड़ा जा
2: सो बेसिकली अमन भाई बिजनेस ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ आप देने वाले नहीं होने चाहिए आप लेने वाले भी होने चाहिए दोनों तरफ से होता है ये ऐसा नहीं है कि हम कई बार कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को लगता है कि भाई बंदे आ गए और ये सिर्फ यू नो बैडली नीड है तो कई बार ऐसा होता है कि अमन भाई जैसे लोग हैं जो जेन्युइनली चीजों को देते हैं और लोग ऐसा समझते हैं कि यार तुम उसका गलत फायदा हो मतलब वो हमारा गलत फायदा उठाना चाहते हैं बट ऐसा नहीं है हर वक्त ऐसा नहीं होता

0: रेडियो देश प्रदेश
1: फॉर एडवरटाइजमेंट्स एंड इनफॉरमेशन साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551
2: स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लेने लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381

0: Live and Cellular Point present AmiWare Live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto wale ready ho jao. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: दोस्तों देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो एएम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुन वास्ते जां देश परदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने आईपीटीवी बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

करले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी फोर्डे अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हुण तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: ஃபாஸ்ட் செகண்ட் மோர்கேஜ் ரீஃபைனான்ஸ் கிரமோனா சொன்னேன் தத்து சிவி அப்படிங்கட்டி மூடம் 1200 டெரி ரோட் ஈஸ்ட் யூனிட் 22 மிசிசாகா 416-804-2015.
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
2: 530. कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी हो अफोर्डेबल पैकेज लई आज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरा नू 416-457-3381 पिछले 30 वर्षों तो सेवन डेज अ वीक तुहाडे अंग संग चलो AM 530
0: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 तो शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट मजा लवो संडे नु पराठा प्लेट मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट ट्यूसडे चना भटूरा वेंसडे लाजवाब वेज थाली थर्सडे यमी हाका थाली फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल कॉल एट 9057948111 सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन
3: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
3: 905-564-6444
2: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जी वाच करना चाहते हो तो वो ते क्लिक करो या फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो ओदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो उत्ते तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7 मॉर्गेज दी दुनिया दे विच चमकदा सितारा प्रभदीप सिंह की तुहाडी मॉर्गेज रिन्यू होने वाली है तुसीं प्राइवेट मॉर्गेज स्टक हो गए हो ते वध इंटरेस्टेड पे कर रहे हो ये तुहाडी मॉर्गेज बैंकां नाल करवा के लो इंटरेस्ट रेट ते गरंटी नाल करवाउणगे ते नाल दी नाल लाइन ऑफ क्रेडिट भी ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ $3500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ 416-710-7524 416-710-7524 ਤੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरों बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही वेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी कम।

0: Artist Drive, Unit 9, Mississauga.
1: Hi, Chuhan, the cockroach bhi. Sun lo meri gal, main is kitchen ch khana banona hi nahi.
2: Hai, phir cockroach da chuhe? Oh, hale meena pehla da treatment karai si.
1: Main tenu pehla hi kya si, saste de chakkar ch na pao. Hun upro basement wale bed bug di complaint hui kari jande a.
2: Oh, main ta kehna ghar hi vech dinne a.
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना चूहे कॉकरोचों कड्डो टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नु कॉल करो जेडे छोटे तो छोटे काम तो लेके वडिया बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट होटल्स मोटल्स नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट सिक्के बंद कम दी गारंटी 647-515

0: कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूनां विच सख्ती लिया रही है। हिंसक अते बार बार अपराध करन वालियां नूं भाईचारे तो दूर रखने लई सिस्टम विच सुधार, तां जो तुसी घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
1: This is AM 530, CHLO AM, an Evanoff communication station, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.

अंजर पे कोई शहने बलिए जान में अपनी देना तो सोने दा की पौना कुड़िए ओ पाल प्यार दा गहना।

नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वापस आ गए जी, वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो, वीकेंड दे विच रेडियो अंदाज नू शामिल कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। रेडियो अंदाज दे विच मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ थोड़े लिए। गलबात करांगे जी अज 7:45 तक रेडियो अंदाज विच सारे लिसनर्स नू, सारे परिवारां नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल, बहुत सारा प्यार ते सारा सत्कार, वेलकम जी आए रहो, खुश आमदीद एंड स्वागतम। आस करदी हां जी थोड़ा दिन बड़ा खूबसूरत लंघिया होगा, दिन बड़ा खूबसूरत सी। बाकी है जी, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, अगर असी चाहिए असी जिंदगी नू मानना चाहिए, जिंदगी दे लिए असी परमात्मा दे शुक्रगुजार होना चाहिए, तो जिंदगी जो सानू इन्निया को बख्शिशा, इन्निया को रहमता, इन्निया को नेमता सानू हर रोज़ हर पल मैं तो कहूँगी कि मिलदियाँ, पर साढ़े को टाइम नहीं हुंदा कि असी उन्हां नू सोच भी सकीए कि सानू बहुत कुछ मिलिया। तो कई बार असी अपनी भज दौड़ दे विच इन्नी को जिंदगी नू कॉम्प्लीकेट कर लें, इन्ना को असी अपने आप नू रुझेवियां दे विच बिजी कर लें कि बाकी सारा कुछ भूल जाने। सो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है जी, जिंदगी नू जरूर आनंदित होकर इंजॉय करो, माणो, अपने आस पास थोड़े परिवार, थोड़े दोस्त मित्र जिन्हां दे नाल भी तुसी टाइम थोड़ा बहुत भी स्पेंड करना चाहते हो जरूर करिया करो, अपने आप दे नाल असी टाइम स्पेंड करना भुल गए सो वो जरूर करिए। वेलकम बैक जी जी आया नू एक बार फिर तो सारे लिसनर्स नू निकी जी आया वेलकम, ते गलबात थोड़े नाल चलती रहेगी। स्टूडियोज़ दे नंबर रहेंगे 416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386-8-416-233-7386

समीन चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उम्दा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उम्दा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज।